0: 855-1984
1: 437-655-1984
2: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो अज ही सानू कॉल करो 647-504-1557। SS Lawn Care थोड़ी लॉन दी संभाल दे लई बेस्ट चॉइस। तुसी नवा घर लगवाना चाहते हो या सॉड इंस्टॉल करवानी चाहते हो, सीजनल ग्रास कटिंग, फर्टिलाइजर, वीड दी ट्रीटमेंट अते हर एक किस्म दी लॉन दी मरम्मत दे लई तैयार हन। फ्लावर बेड बनवाओ या साफ करवाओ अते प्लांट्स दी ट्रिमिंग भी करदे हन, चाहे होवे रेजिडेंशियल, कमर्शियल या फार्म हाउस दा काम। अज ही कॉल करो 437-655-1984 437-655-1984।
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
4: SNS Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही SNS Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000।
5: JS Home Improvement ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਬੀਮ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਕਿਊਮ ਸਿਸਟਮ

0: मास्टर ज्वेलर्स, सोने दे राणी हार, कंगन, बैंगल्स, कोई भी सोने की खरीदारी दे मास्टर ज्वेलर्स से एक बार गेड़ा मारो एयरपोर्ट रोड से मेफील्ड के बिल्कुल कोर्नर के उत्ते। सुखपा जी जुड़ चुके एक बार फिर फ्रॉम द वन एंड ओनली ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड ऑफ फर्नीचर जिते के एनिवर्सरी सेल चल रही है। जी सुखपा जी
1: बहुत शुक्रिया, धन्यवाद नवी भाई जी। बिल्कुल इस वीकेंड के उपर एनिवर्सरी एनिवर्सरी एनिवर्सरी सेल लगन जा रही है फर्नीचर के उपर। परिवारों ने किसी भी तरह की फर्नीचर की बाइंग करनी है, बेडरूम सैट, सोफा सैट, डाइनिंग टेबल, तो जरूर एक चेक कराओ 6085 टॉमगन रोड के उपर 6685 टॉमगन टॉमगन टॉमगन रोड नूं परिवार याद रखना। तो जिन्हों परिवारों ने ग्लास का मॉडर्न डाइनिंग टेबल बाय करना किचन के लिए, जी हाँ ग्लास का मॉडर्न डाइनिंग टेबल, टेबल से 6 जर टेबल से 6 जर जिहदी रेगुलर कीमत 1100 डॉलर सी, सिर्फ 199 दे स्पीकर दे उपर एनिवर्सरी सेल दे उपर ग्लास दा मॉडर्न डाइनिंग टेबल ते नाल 6 चेयर सिर्फ 199 डॉलर दा डाइनिंग टेबल बाय कर लेना। ते जो तुसी बाहर आना एक बॉक्स दे विचों तोहफा लेना ना भुल्यो, जिच 1100 डॉलर कैश, 500 डॉलर कैश, एप्पल दी स्मार्ट वॉच, वड्डे साइज दा टीवी, माइक्रोवेव, बहुत सारे गिफ्ट होणगे। डाइनिंग टेबल बाय करके पर्ची अपनी कटनी है, जेड़ा भी तुहाडा गिफ्ट मिलिया तुहानू राइट वे गिफ्ट अपनी गड्डी रख के तुसी अपने घर लेके जा सकते हो। सो जरूर एक चक्कर लाओ 6085 टॉमगन रोड 6685 टॉमगन रोड के उपर, डेरी टॉमगन की मेन इंटरसैक्शन हाईवे 410 तो सिर्फ 2 मिनट की दूरी के उपर 6085 टॉमगन रोड 6685 टॉमगन रोड के उपर लगन जा रही है एनिवर्सरी एनिवर्सरी सेल सेल सेल। नबी बाजी
0: क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475041557 6475415 1557। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ, 3248 ਹੈਲੋ, 3248 ਹੈਲੋ, ਓਕੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, 4001 ਹੈਲੋ।
2: हेलो,
0: हाँ जी
2: ट्रैक्टर
0: ट्रैक्टर ओके, पर ट्रैक्टर तो गाया ही राज बराड़ ने।
2: हाँ जी,
0: तो फिर मैं सवाल होर कीता, मैं सवाल कीता थनु ए के राज बराड़ ने एक गाना लिखिया गाया किसी होर ने है, वो गाना बहुत मशहूर होया, वो केड़ा गीत है? सो थोड़े थोड़े सुन लिया करो कि मैं सवाल की किया, तो है थोड़े ट्रिकी जहा सवाल है, मैनू लगता नहीं बहुते लोगों को पता। जिहड़े गीत की मैं गल कर रहा जे तुसी लाइव उन्होंने सुनिया गीत गाँव हो गाँवते हुए वो हमेशा जिक्र करते कि राज बराड़ होना का लिखा हुआ गीत है, बट बहुत कम लोगों को पता। सो तो मैं कोई ट्रिकी सवाल पूछे, देखिया किसी को कुछ नहीं पता लग्या है। सो 905-673-3337 अपना नंबर है, 9056733337। जी 4100 हेलो, किवें हो?
3: हेलो, हाँ जी सतिकाल जी,
0: सत श्रीकाल।
3: हाँ जी बागो बाग जी,
0: ए किदा गीत है?
3: गुरवीर मलके दा, गुरवीर मलके दा गाया।
0: अच्छा, ये राज बराड़ ने लिखिया?
3: क्या
0: बात है, वेरी गुड जी। 3248 हाँ जी, ओके केड़ा गाना? ओके ठीक है, हुण तुसी गाने दा दस्सो ना नाम, पर थोनू किवें पता, तुसी किते सुनिया उन्होंने कहा? मिस्टर सिंह पीजे ते जायो ते मैं तुहानू डिटेल सारे भेज देना, ठीक है?
3: ठीक
0: है, ठीक है, नंबर लिख लवां, एक मिनट 6463 2। थोड़ा नाम रे?
3: ਵਰਿੰਦਰ
0: ਜੀ, ਵਰਿੰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 7583 ਹੈਲੋ,
4: ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ,
0: ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ?
4: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹਾਲੇ ਸਪਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਗਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਰਾਜਬਾੜ ਦਾ, ਗਾਇਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ।
0: ਹਲੇ ਸਫਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਣੀਏ 911 ਨੂੰ,

क्या बात है। क्या बात है। अच्छा ऐसी गायकी आ क्या पाता, ये तो 80-90 वाले दिल च वसे हुए गाने।

0: रहा।
1: तो इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेवन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक की ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap।
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: जी
1: जी बीरी किचन।
0: हाँ बेरी बेरी किचन, बीरी किचन के बेरी किचन बोल दियो तुसी।
1: बीरी बीरी
0: बीरी किचन। जी जी जी जी, अपना नंबर शेयर कर दियो श्रोतियां दे नाल।
1: 306-850-8227।
0: एक बार फिर बोल दियो
1: 306-850-8227।
0: जी जी। सो दोस्तों नोट कर लो नंबर, घर वर्गे खाने दा आनंद मानना होए, तुहाडे 100-125 आदमी दी घर दे विच कोई गैदरिंग होए ते तुसी केटरिंग करवानी होए, घर दे विच कोई खलारा ना पाना होए ता तुसी बीरी किचन नू संपर्क कर सकदे हो। फोन नंबर भैन जी एक बार होर बोल दियो
1: 306-850-8227।
0: जी जी जी, चलो थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।
1: अपना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देना।
0: जी जी जी जी जी, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो दोस्तों तुसी जुड़ियो रेडियो प्रोग्राम सबरंग दे नाल, साडा तुहाडा साथ रहेगा 11 बजे तक। ते मैंने एक दिन पढ़ रहा सी, ओह कहिंदे वी इक किश्ती दे विच ना कुछ दोस्त सैर करन वास्ते एंजॉय गए किसी झील दे विच, 10 दोस्त सी। जदों घूम फिर के आए ना, इंजॉय करके आए ते वापस आके ओह कहिंदे वी चलो आपां बड़ी देर घूम फिर के आए आ, घंटा दो घंटे विच घूमदे रहे आ, विच इंजॉयमेंट भी कीता, खादा पीता भी उन्होंने, मौज मस्ती भी कीती। जदों वापस आए ना ते ओह कहिंदे वी गिनती कर लिया यार किते कोई घटना हो गया होवे, आदमी उत्थे पीती खादी च कोई पता नहीं लग्या। ओह एक बंदा गिन लगा, ओह शुरू करन लगा 1-2-3-4-5-6-7-8-9। ओह कहिंदा वी इह तां 9 ही होए आ, अपने आप नूं गिणिया ना करे। वह कहिंदा 9 होए यार, दसवां कित्थे रह गया, वह कितने बाई चांस कितने मिस हो गया। दूसरा कहिंदा नहीं नहीं यार तैनूं गिनना नहीं आया, मैं गिनदा। वह भी दूसरे तो शुरू कर लिया 1-2-3-4-5-6-7-8-9। वह कहिंदा हाँ यार बिल्कुल सही गल है, ये तो 9 गिने है, तो दसवां आदमी अपना है कितने है। तीसरा कहिंदा मैं गिनदा। तीसरे ने भी उस तरह ही गिनती की, वह कहिंदा यार आदमी कोई ना कोई अपना ना रह गया उत्थे झील दे विच, ते तां 9 ही आ, ते दसवां कित्थे है। वह बाई चांस ना उतों एक कोई सूझवान सियाणा आदमी निकलता सी, वह कहिंदा सी यार तुहाडी गिनती मैं करदा उहदे कोल, कहिण लगे वी असीं 10 जणे गए सी ते 9 जणे रह गए, दसवां पता नहीं कित्थे है। वह कहिंदा मैं गिनती करदा, मैं तुहाडी पिठ दे पिछे ना एक एक थप्पड़ मारदा जाना हौली हौली ते गिनती हो जूगी। वह गिनती करदा गया, दूसरा आदमी 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10। वह कहिंदा वी 10 है तुहाडी गिनती। सो किड्डा मैसेज इहदे विच है कि वह दसवां आदमी कौन है, तुहाडा अपना आप है। असीं इस समाज दे विच इस जिंदगी दे विच विचरदिआं होइआं ना दूसरिआं नूं देखदे आ, दूसरिआं दीआं गलतियां कढदे रहिंदे आ, दूसरिआं नूं सलाहां दिंदे रहिंदे आ, दूसरिआं नूं नसीहतां दिंदे रहिंदे आ, दूसरिआं नूं सोचां अपने मुताबक उहनां नूं ठीक करन दी कोशिश करदे रहिंदे आ, उन्हां नूं देखदे रहिंदे आ, उन्हां नूं वाचदे रहिंदे आ। लेकिन बशर्ते इस दे चाहीदा सानूं की है, अपने आप नूं देखना चाहीदा है। तो दसवां आदमी कौन है, तुसी खुद अपने आप नूं देखोगे तुसी ओ दसवां आदमी। सो तुसी अपने आप नूं भुल जांदे हो ते दूसरिआं दे वल देख के कदे उन्हां दी नकल करन दी कोशिश करदे हो, कदे उन्हां नूं जैलसी करदे हो, कदे उन्हां नूं क्रिटिसाइज करदे हो, कदे उन्हां नूं बुरा भला कहिंदे हो, कदे उन्हां दा बुरा सोचदे हो। अपने जिन्ना तुसी ध्यान दूसरिआं दे वल लगाउंदे हो ना, जिन्ना तुसी ध्यान दूसरिआं दे नुक्स कढ़न वल लगाउंदे हो, जिन्ना तुसी दूसरिआं नूं क्रिटिसाइज करन दे वल, जिन्ना तुसी दूसरिआं दे उपर फोकस करके टाइम अपना वेस्ट करदे हो ना, जेकर तुसी उन्ना टाइम अपने आप दे उपर लगा दे हो ना, ते तुहाडी जिंदगी बहुत खूबसूरत बन सकती है। सो 647-367-5353 साडे स्टूडियो दा नंबर है, 6473675353 साडा तुहाडा साथ है 11 बजे तक। तुसी किसे कोई गलबात करनी होवे साडे नाल संपर्क कर सकदे हो 647-367-5353। सो गाना हुण तुसी एक सुन रहे सी बड़ा प्यारा, छड दे फिकरां दिला मेरिया तूं छड दे सिट दे डोरां उत्ते। असी देखो सोचदे हां सवेरे सवेरे बहुत सारे दोस्त मित्र भैन भरा पंज बाणियां दा पाठ भी असी करदे आ, अरदास भी करदे आ, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच साडी अथाह श्रद्धा है, आस्था है। पहले गुरु नानक देव जी पहली ही उन्हां दी बाणी जिहड़ी बिल्कुल गुरु ग्रंथ साहिब दे शुरुआत दे विच पहली बाणी है जिसनों असी जपजी साहिब कहने आ, और उस जपजी साहब दे मूल मंत्र दे विच पहला ही शब्द

0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब ते अमीर विरसे दी पुक्कल चो यादां दी संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहेबा वे चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: शादी दी मूवी बनवाने ली या रिंग सेरेमनी ली वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ली याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416-930-1251 416-930-1251
1: चंगा ट्रक ते वधिया जॉब लैण लई कित्थे जावां
2: तां फिर तू क्वालिटी लॉजिस्टिक क्वालिटी ट्रक सेल वालियां कोल जा 12 महीने कम पाओ ते नाले चंगे डॉलर कमाओ
0: क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक जिन्हां नूं पाल है काबिल ते ईमानदार ट्रक ड्राइवर्स ट्राला ड्राइवर्स ते ओनर ऑपरेटर्स दी वधेरे जानकारी लई क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक दे जसवीर होरा नूं कॉल करो
2: 416-717-2929
0: 416-717-2929 क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक 14 स्टेनवे बुलेवर्ड यूनिट 4 इटोबिको
3: मिलना इवेंट्स लेके आ रहे ने तुहाटे वास्ते रू का सफर टूर जी हाँ लाइव मास्टर सलीम कॉन्सर्ट इन टोरंटो 24 जुलाई नो मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच
4: मैं के अचन जी सलाम तीने
3: सिर्फ ते सिर्फ मिलना इवेंट्स दे नाल ता फिर देर किस गल दी तारीख नोट कर लो 24 जुलाई अपनी टिकटा आज ही बुक करो लॉग ऑन करो www.milnatickets.com ते स्पॉन्सरशिप अते होर किसी भी जानकारी लई तुसी रोहन शर्मा अते प्रभ संधू नू कॉल कर सकदे हो 647-783-9873 या 437-870-0001 ते

0: सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
1: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
0: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल
1: 647-706-6640-647-706-6840।
2: ओए ट्रक काला लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा।
3: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावा जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
4: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन।
5: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दियां मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध भी है। जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
3: कॉल करो जेएन गैरी नूं
5: 905-459-5533
3: 905-459-5533
5: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।

0: 7998877 sofastudio.ca। थैंक यू जी।
1: पाजी अज घरे तंदूरी बनाओ, पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना ओ घरे नहीं बन पाउना।
2: हाय गाइस, एंजॉय करो तंदूरी बॉयज, वेज नॉन वेज स्वादले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज।
1: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट। पाठ जागो अते वेडिंग ले आज ही कैटरिंग बुक करो 9059562111 9054519200। सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस।
3: टीम फोर एंटरटेनमेंट पेश कर देंगे पंजाबी विरसा 2026।
4: ओए सावन चढ़िया
3: टोरंटो शो सैटरडे 25 जुलाई नो
4: दुनिया मेले जांदी
3: थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो।

0: Jaldi Poncho, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 90545-12600. Hello, bro. Kithe hai tu?
1: Main client nu milan ja reha. Soch reha si Tim Hortons ch baith jaiye.
0: Oh, yaar. Ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiyan chahidiyan ne. Nazara restaurant leke jao unnanu. Private booths ne full privacy mildi hai. Free Wi-Fi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai. Te khana bhi bahut vadhiya.
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
0: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी हमें कॉल करो 905-451-2600 905-451-2600

0: जल्दी पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600
1: मेरी पहली पसंद
2: आई लव इट
3: मैं तो सवेरे सुने बिना रह ही नहीं सकती
1: हम सबकी पसंद
4: रेडियो आवाज
1: एवरी मॉर्निंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 9 to 10 एंड सैटरडे 10 to 1 ऑन AM 530 नॉन स्टॉप कॉल्स नॉन स्टॉप टॉक्स प्रमोट योर बिजनेस विद अस कॉन्टैक्ट 416-518-3200
5: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे इतनियां तरकीबां लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही
6: निर्बल बाबे ने कहा सी कृपा हो जाओगी नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा तो हो ही नहीं
7: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया
8: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता
9: रेडियो आवाज
10: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200

0: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭਜਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਭਜਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਭਜਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹਰੀ ਓਮ ਸ਼ਰਨ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੈਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ETN ਟਰੈਵਲਸ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ETN ਟਰੈਵਲਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8:30 ਤੱਕ ਇਹ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਬੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਪ ਟਰੈਵਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈਕੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ETN ਟਰੈਵਲਸ ਵਾਲੇ। 905-463-1301 ਨੰਬਰ ਹੈ, 905-463-1301 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੋਵਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਜੂਸੀ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਔਰੇਂਜਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਐਪਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਬਨਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਦਵਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਖਰਬੂਜੇ ਜਾਂ ਤਰਬੂਜ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੂਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ ਮਸਾਲੇ ਚਾਵਲ ਆਟੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੰਡਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕੋ ਅਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰੋ। ਐਨ ਵਧੀਆ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ 299-801-0566 ਨੰਬਰ ਹੈ, 289-801-0566 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਕਾਫੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਹ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਝੋਲ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਲੋਨ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 437-234-3375, 437-264-3175, 437-264-3175 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਭੀ ਨੂੰ।
0: ਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ?
1: ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ।
0: ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਸ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਥ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੁਣ ਐਨਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਮੇ ਸਿਰਫ 1 ਵੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਿਸ ਵੀਕ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪ ਐਨਰੋਲ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਗ੍ਰੋਸ ਸੇਮ ਬਟ ਲੋਨ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਆਏਗਾ। ਆਪ ਆਜ ਐਨਰੋਲ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਜੋ ਹਾਫ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗ੍ਰੋਸ ਕਾ ਵੋ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ। 30-100,000 ਕੇ ਫੰਡਿੰਗ ਆਪ ਹਕਦਾਰ ਬਨ ਸਕਤੇ ਹੈ ਇਸਕੇ, ਜਿਸਕਾ ਹਾਫ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ। ਆਪ ਪੀ ਆਰ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਇਨਕਮ 2024 ਕੇ ਐਨ ਓ ਏ ਪੇ ਲੈਸ ਦੈਨ $70,000 ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ। ਆਪ ਤੋਂ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਕੀ ਹੋਤੀ ਜੋ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ, क्योंकि वो अपने टैक्सेस खुद करते हैं. एंड देन आसान से कोर्सेज करने हैं आपने, कोई हार्ड कोर्सेज नहीं है, आसान सी असाइनमेंट्स है, एग्जामिनेशन नहीं है, फंडिंग आपके खाते में आती है डिपेंडिंग ऑन फैमिली साइज. जितनी इनकम कम आती है एनओए पे, जितना फैमिली साइज ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, मैरिड है आप, आपको ज्यादा बेनिफिट है. कोई एज लिमिट नहीं है, आप चाहे 75 के है, पेंशन पे हैं, आप आराम से कोर्सेज कर सकते हैं फुली ऑनलाइन घर के कम्फर्ट से, आराम से. 8 साल से बिजनेस में है, बहुत लोग ऑलरेडी हेल्प कर चुके, बहुत टाइम हो गया, बाल सफेद हो चुके, कोई हेरा फेरी नहीं है इस काम में.
0: सर आज कहते बाल सफेद हो चुके हैं तो
1: असली में होंगे.
0: ये तो जो बाल सफेद है ना वो तो आजकल बच्चों के भी हो जाते हैं ना.
1: हाँ लेकिन हाँ इस काम में
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो एक्सपीरियंस के साथ भी, एज के साथ भी, ये भी जो बिल्कुल सराश कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमको इतनी देर होगी ये काम करते हुए तो हमें पूरी नॉलेज है इस चीज की, कैसे आपको ग्रांट ज्यादा से ज्यादा दिलानी है. और किसी प्रकार का कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है. नहीं, जो हमारे लिसनर सुन रहे हैं जरूर अपना कांटेक्ट करें सराश को. और सराश अपने एक बारी ये भी बता दें कि ऑफिस आपका है कहाँ पे.
1: हाँ जी, ऑफिस हमारा हरनतारी डेरी पे है, 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड पे, लाइक प्रॉपर ऑफिस है जी. आप आए ऑफिस में, कैफे में नहीं मिलते, जो लोग ये काम करते हैं ना गलत तरीके से, वो लोगों को कैफे पे मिलते हैं. हम आगे क्लाइंट से बताते हैं यहाँ से
0: जी जी,
1: सर वो बाहर मिलता है, वो 3500 पहले लेता है, वो 2.5 साल पहले ले लेता है, क्योंकि इसमें क्लाइंट को अच्छा बेनिफिट हो रहा है. लेकिन हम लोग मिसयूज नहीं करते, इस चीज से काम करते हैं. हमारा, हमें आपकी गुल्लक देखनी है, आपकी फंडिंग में हमारी नजर ही नहीं है. अगर नजर होती, महीने के 4 क्लाइंट करते, कमीशन लेते और सो जाते. तो लेकिन हम ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं. काम होने के बाद अपनी 199 या 499 छोटी सी फीस होती है, डिपेंडिंग ऑन कोर्स, नॉट डिपेंडिंग ऑन योर फंडिंग. क्योंकि कुछ कोर्स आसान है, फुली ऑनलाइन तो दोनों है, और कुछ कोर्स बहुत ही आसान है जिनमें टीचर नहीं है, सेल्फ स्टडी मॉडल है. तो इसलिए आप कॉल करें, ऑफिस आए, असेसमेंट कराएं, कोई इसमें कैच नहीं है.
0: अच्छा, जो ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इनके लिए कितना समय निकालना पड़ता?
1: 2 से 3 घंटे एवरीडे, दैट्स इट, मंडे टू फ्राइडे, वीकेंड छुट्टी आपकी.
0: ठीक
1: तो है, आराम से आप कर सकते हैं, फुली ऑनलाइन, फोन पे करें चाहे लैपटॉप पे करें. एग्जामिनेशन है नहीं, आसान से कोर्सेज है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, स्किल भी आप हासिल करते हैं, गवर्नमेंट से फंडिंग हासिल करते हैं. अब लाइक जब अभी ने कल आप देखना न्यूज आई है एक, कि एक बंदा कनाडा में इलीगल था 20 साल से.
0: अच्छा,
1: उसने ओंटारियो वर्क्स का बेनिफिट अप्लाई करा, ओंटारियो वर्क्स में $800-900 मिल जाता महीने का, तो उसको बेनिफिट मिल गया.
0: अच्छा,
1: मतलब जो कनाडा में बंदा 20 साल से इलीगल है वो भी जीत गया और उसको बेनिफिट मिल रहा है. जब गवर्नमेंट वहां पे पैसा लगा रही है, आपको तब तो हैरानी होती नहीं. जब गवर्नमेंट आप पे पैसा लगाती है तो आपके कान खड़े हो जाते हैं कि ऐसा पैसा क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है. जब गवर्नमेंट आपकी मोजाम्बिक्यू हेती को $1.9 बिलियन, मतलब 1900 मिलियन, जितना कनाडा के एजुकेशन का बजट है ना, 1 बिलियन है, 1 बिलियन 1000 मिलियन साल का. इन्होंने 2 बिलियन तो हेती को दे दिया, वो कंट्री तो लोगों को पता ही नहीं होगा, इसी तरह कंट्री होता है.
0: गवर्नमेंट आपको दे रही है तो आप उसका जरूर फायदा उठाएं. तो एक बारी ना जो ये ग्रांट है वो मिल रही है अभी, जो बाद में जो आप कह रहे हो नेक्स्ट मंथ से ग्रांट नहीं मिलेगी, सिर्फ लोन मिलेगा. अच्छा, जो ये लोन है ये कितनी देर बाद वापस, कितनी देर बाद करना है?
1: हाँ जी, सो एग्जाम्पल लेके चलते, अगर फैमिली ऑफ 5 है, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, मतलब 3 बच्चे उनके जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जा रहे हैं, उनको अप टू 100,000 की फंडिंग बनती है, 50,000 तो ग्रांट है जो वापिस ही नहीं करना, साथ में एडिशनल ऑप्शनल 50,000 का लोन है. लोन जो है आपने वो 1.5 साल बाद रिटर्न करना स्टार्ट करना, तब तक ये लोन 0% पे है. 1.5 साल बाद भी इसका 2.5% पे आ जाए, साल का 2.5%, मतलब आपने 50,000 का जो लोन है 55,000 वापस करना है 10 साल में, आसान से किस्तों में.
0: अच्छा, 10 साल
1: कोई क्रेडिट चेक नहीं है इसके अंदर.
0: ठीक
1: है, मैक्सिमम 14.5 साल है और लोन डेफर भी जाता है. आपके पास जॉब नहीं लग रही, अगर ऐसा भी नहीं कुछ हमें जॉब करनी है इसके बाद, या कोई रिस्ट्रिक्शन है, पैसा कहीं भी लगाए, कैसे भी लगाए, गवर्नमेंट आपको यही पैसा रियल लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए, कहीं ग्रोसरी करे, कुछ भी करे, और आप ये पैसा कहीं भी कैसे भी स्पेंड करें. और अगर जॉब ही लगी तो ये नहीं गवर्नमेंट बोले किस्त दे, ना, लोन डेफर हो जाता है. फोन करें लोन डेफर, 1 साल 2 साल 3 साल. तो इसलिए ऑलरेडी बहुत लोग की लहा रह चुके हैं. अभी कल एक बंदा मिला मुझे, कहता सर पूरी बिल्डिंग ने ले लिया, अपार्टमेंट बिल्डिंग नहीं तो पूरे बिल्डिंग नहीं, तो मतलब आप पीछे ना रहे, आप अपने नुकसान करा रहे हैं क्योंकि आपके आस पड़ोस वाले सब लोग कुछ बता रहे हैं कुछ नहीं बता रहे लेकिन सब ले चुके हैं।
0: ठीक है। अच्छा जो एक और क्वेश्चन आया था मुझे, जैसे कई कहते हैं कि अगर एक बारी हम ग्रांट ले लेते हैं कोर्स कर लेते हैं उसके बाद भी अगर हम आगे कभी दोबारा करना चाहेंगे हो सकता है फिर वो ले सकते हैं कि नहीं?
1: बिल्कुल जी, शो सुन के अराउंड 30% क्लाइंट्स तो रिपीट क्लाइंट्स है, वेरी इजी टू रिटेन। उनको पता है जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं सब बढ़िया है, कोई कैच नहीं है, कोई मोर्गेज वाली फंडिंग तो है नहीं जिसमें कागज चलते हैं, बैंक को पावर ना लिया काम तो है नहीं है, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट को सबमिट होते हैं, एनओए आपका बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, वहां पे कुछ हेरा फेरी होती नहीं है, उन्हें पता होता है, वो राइट अवे कॉल करते हैं, उनको पता लगता है हमारा जो तरीका है वो अलग है, क्यों कॉलेज की फीस कम है, जहां उन्होंने पढ़ा होता है उनकी फीस 15,000 होती है कॉलेज की, उनको पैसे कम बनते हैं, वो राइट अवे बोलते हमारे कॉलेज की फीस 11,000 से लेकर 15,000 है, वो चूज करते हैं कोर्स, उनके ज्यादा बेनिफिट है, राइट अवे छुटकी में रिटेन जाते हैं वो लोग, तो वो दो बार कर रहे हैं तीन बार कर रहे हैं फंडिंग ले जा रहे हैं, लेकिन जो रह गए वो इस हफ्ते के बाद रह जाएंगे, क्यों गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर रही है, ग्रांट्स में मैसिव कट्स कर रही है, ग्रॉस सिस्टम लेकिन लोन के रूप में आएगा, तो सर आपके पास यही वीक है, ये घर की खेती नहीं है मेरे जो मैं आपको पुश कर रहा हूँ, जो है सो है, आज फेवरेबल है कंडीशन तो है, उसके पास फेवरेबल नहीं है लोन ही आएगा।
0: ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਫਿਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਵੇ ਫਿਰ ਜੀ।
1: ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਨੋ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਨੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ, ਆਫਿਸ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 218 ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੁਲੇਵਰਡ ਹਰ ਐਂਟਰੀ ਡੇਰੀ ਪੇ, ਆਜ ਵੀ ਆਪ ਆ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੇ ਕੱਲ ਆਪਕੋ ਆਪਨੇ ਮੇਰਾ ਸੁਣਾ ਹੈ ਮੁਝੇ एक हफ्ते तक पहले सिर्फ इस वीक तक, फिर आप मुझे गवर्नमेंट चेंज करिए क्राइटेरिया देन थिंग्स विल बी चेंज्ड, नंबर नोट करें अभी असेसमेंट करें कॉल अभी करें ऑफिस अभी आए 437-264-31-75 437-264-31-75 437-264-31-75 हमें कॉल करें तो एस्टिमेट लो

0: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
1: Hello.
2: Hello.
1: जी.
2: सस्त्रीकाल बेटा.
1: सस्त्रीकाल जी. सुनाओ जी ठीक
2: है. मैंने कलदीप डॉक्टर नहीं जड़ा. वो नंबर चाहिए था.
1: केरे डॉक्टर जी?
2: कलदीप डॉक्टर.
1: कुलदीप डॉक्टर नहीं मेरे को नंबर है जी.
2: नहीं
1: जी मेरे को नहीं है जी.
2: ठीक
1: है. थैंक यू जी. बड़ी मेहरबानी जी. थोड़ी कॉल आई जी.
3: जी असीं आप दे नाल शेयर करेंगे जी. शैल गैस स्टेशन. ए शैल गैस स्टेशन च मल्टीपल इनकम जनरेटिंग ही गावे. एदे च टनल कार वाश ही गए. चार कॉइन कार वाश ही गए. एच कॉइन लॉन्ड्री की जे. एच तीन यूनिट ही गए जेडे रेंटल ने. थ्री बेडरूम अपार्टमेंट ही गया. टेक आउट रेस्टोरेंट ही गया. यू नेम इट. ब्यूटीफुल लोकेशन. 1.2 एकड़ लॉट ही है. क्वाथरा लेक से एरिए च ही गावे. ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੇ $750,000 ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਹੈਗਾਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ 647-988-4449. ਹਸੀਬ ਸ਼ੇਖ 647-988-4449. ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਜੀ.
4: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਾਪੇ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ. ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਵਰ ਸਕੂਲ. ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਦੇਵੇ. ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਵਰ ਸਕੂਲ. ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਵਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਐਟ ਕੁਈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ.
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे. आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज.
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा. कॉल 905-460-8888. दैट्स 905-460-8888.
5: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस. बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्राइस. स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
7: A1 केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करदा आ रहा है. केक्स, पेस्ट्रीज, मठियाईया, समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो. नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचन वाले तो बचो ते जसपाल नागरा नु फोन करो.
8: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m.

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap.
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests, and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
3: हेलो
4: हेलो, कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
3: हां जी, कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
4: इंडिया दी टिकटां चाहिदियां सी।
3: ओ इंडिया की, तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटां ले लो। इंडिया किथे जाना?
4: चार टिकटां दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी, मिल जानगियां?
3: मिल जानगियां, बिल्कुल मिल जानगियां। दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, एहो तां साडी स्पेशलिटी है। बस दसो की टिकटां कदों दी चाहिदियां ने। ते हां, स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने।
4: भरोसेमंद सर्विस ते सब तों वधिया रेट्स लई इक्को इक नाम, कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल। बुकिंग लई अज ही कॉल करो 905-678-1200 905-678-1200. Kataria Tours and Travel.
5: 32 55 80
6: 905-450-2828 905-450-2828
5: 905-450-2828

0: गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी उम्मीद करते हैं तुहाडा अज दा इह गर्म जिहा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। 1 बजे तो बाद गीत संगीत का प्रोग्राम भी हुंदा है, सुखी निजर साहब वतनों दूर अगे चल के 1 बजे तुहाडे लई पेश करनगे। सब तो पहला छतरी छाता रिपोर्ट हाजर है। अज सूरज सिंह 5:48 ते सवेरे आया, शाम नूं 8:57 दे चले जाना। वो पंडित कन्नो फड़ के लियाओ जिहड़े कहिंदे चंदा रात नूं निकलदा। सवेरे 5:39 ते आया ते रात नूं 9:41 ते जाना। सारा दिन चंद्रमा चमकदा रहेगा। अज तापमान तकरीबन 42 डिग्री रहेगा। It's gonna feel like 47 degree. सारा दिन सूरज चमकेगा, कल नूं सूरज चमकेगा। टेम्परेचर गोना बी 35 डिग्री, इट्स गोना फील लाइक 38 डिग्री। थर्सडे नूं 33 डिग्री तापमान होएगा, इट्स गोना फील लाइक 37 डिग्री। फ्राइडे नूं 30 डिग्री तापमान होएगा, इट्स गोना फील लाइक 33 डिग्री। सैटरडे नूं सारा दिन बदलवाई नाल छतरी छाता दी लोड पेगी, तापमान 26 डिग्री। संडे नूं 28 डिग्री तापमान रहेंगे। अज दे प्रोग्राम नूं सहयोग दिता है गोल्डन लाइन ट्रैक्टर वाले वीरां ने, जिथे कि कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर तो तुसीं लै सकदे हो। बड़े भरोसेमंद ट्रैक्टर ने, बाय द वे इंडिया तो बन के आए ने। ये लोडर दा काम करदे ने, लैंडस्केपिंग कर सकदे हो। तुसीं घाह घू कटना है 2-4 एकड़ जो तुहाडा मकान है वह कर सकदे हो। लोडर ला सकदे हो, स्नो ब्लोअर ला सकदे हो, स्नो ब्लेड वर्गे अटैचमेंट भी मिलदे ने। फाइनेंसिंग मौके ते है, गल ही कोई नहीं। तेज भाई नूं फोन कर लो 6 47 6 22 17 54, 6 2 2 1 7 5 4।
1: क्रिमिनल डिफेंस लॉयर स्टेटन लॉ प्रोफेशन कॉर्पोरेशन दे करणदीप साही। बेल हियरिंग, ड्रंक ड्राइविंग, घरेलू झगड़ा, चोरी दा केस या कोई भी कानूनी उलझन च फंसे होवो, तुहाडा अपना क्रिमिनल डिफेंस वकील स्टेटन लॉ प्रोफेशन कॉर्पोरेशन दे करणदीप साही। जाने अनजाने विच होए जुर्म लई तुहाडे हक लई तुहाडे नाल खड़े ने। मेफील्ड एंड एयरपोर्ट, कॉल 6478715000, 6478715000।
2: Culture of Punjab is sponsored by Airport Nissan. For the best deals in Brampton, come to Airport Nissan at the corner of Airport Road and Queen Street, or call 905-791-4900. Culture of Punjab, serving the South Asian community in and around the GTA. For exciting packages, promotional offers, and inquiries, please call 416-677-0609. That's 416-677-0609. Culture of Punjab.
0: Are you ready? जंक्शन लई 6474294040। केटरिंग करानी है छोटी वड्डे फंक्शन लई, नो प्रॉब्लम 6474294040। लाइव कुकिंग करानी है करे, नो प्रॉब्लम 6474294040। तुसी इनारे बैंकुएट हॉल या लॉन्ज में छोटी वड्डी पार्टी करनी है, नो प्रॉब्लम 6474294040, 6474294040।

0: $1,000 राइट, एक्सटेंशन दे अलग पे है देने पड़ते दोनों, और उसका साथ जो है डेली था तो जो है पेनल्टी चार्ज होती है उसकी. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस सिचुएशन में, अगर इफ यू थिंक समवन not got the mortgage because of income issues or because of the last minute decline, sometime kya hota hai Kiran ji, property ki value bahut zyada hai aur only single applicant hai na, aur maybe some delinquency on your credit report hai na, to us situation mein last minute surprise always a shocking, kyunki aapke akele ka nahi hai, pura parivar hi shock mein aata hai, because you are eventually wants to move to your dream house ya aap thodi ek investment property ke time पे नहीं क्लोजिंग हो रही है, तो बट ऑब्वियस है यू गोना एड ऑन एडिशनल चार्जेस. अब आपकी सिचुएशन में कैसी भी हो, अगर आपकी मॉर्गेज डिक्लाइन हो गई है, वी विल बी एबल टू हेल्प यू टू क्लोज योर मॉर्गेज इन टू बिजनेस डेज, दो दिन थे जी. यस, एनी अमाउंट फ्रॉम हाफ अ मिलियन टू $2.5 million we will be able to close in two business days. अगर आप वीकेंड पे भी आंदे हो जी, फ्राइडे को आंदे हो, मंडे मॉर्निंग सुबह शाम को 4 बजे से पहले पहले योर लॉयर विल गेट द फंड्स राइट. और साथ साथ जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आप दूसरा सिचुएशन ये आ रही है अप्रेजल शॉर्ट नहीं जी, अप्रेजल स्पेशली जो कॉन्डो की, हाई राइज कॉन्डो की, हाई राइज कॉन्डो लिया हुआ अप्रेजल शॉर्ट आ रही है, सो देर इज अ सोल्यूशन फॉर इट. आई हैव अ सोल्यूशन टू क्लोज योर मॉर्गेज, स्पेशली पीपल कमिंग अप विथ कुछ कुछ बिल्डिंग में, तो कुछ कुछ हाई राइज में तो 2 से 3 लाख जी अप्रेजल शॉर्ट आ रही है जी, है ना. आपकी इस तरह की सिचुएशन है, आई हैव अ सॉल्यूशन, आई एम हियर इन मिसिसागा, जस्ट गिव मी अ कॉल, गिव मी अ शॉट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलीजन. नंबर टू कॉल मी 647-512-7000.
1: बिल्कुल जी, और इसी के साथ मुकेश जी, आई हैव वन मोर क्वेश्चन टू यू. इफ समवन इज स्टक विद द प्राइवेट फाइनेंसिंग एंड स्टिल हैव अ लो इनकम एंड लो क्रेडिट, सो उसमें आप व्हाट इज योर सॉल्यूशन एंड हाउ यू कैन हेल्प देम?
0: देखिए, ये मैसेज में ज्यादा इम्पोर्टेंट विल लाइक टू हेल्प टू द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल.
1: हाँ जी,
0: सेल्फ एम्प्लॉयड लोग स्पेशली जिसे लास्ट 2-3 साल में काफी क्राइसिस से गुजरे हैं, स्पेशली कुछ इंडस्ट्री है, इमिग्रेशन हो गई, ट्रकिंग इंडस्ट्री हो गई, और बहुत सारी इंडस्ट्री, इवन फूड इंडस्ट्री राइट, तो इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट, कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिट जो इम्पैक्ट हुआ ही हुआ है राइट, बिकॉज ऑफ द मिस पेमेंट मॉर्गेज, सॉरी क्रेडिट कार्ड पेमेंट, मॉर्गेज पेमेंट. तो इस सिचुएशन में अगर आप ऑलरेडी प्राइवेट फाइनेंस के साथ हो, प्राइवेट लेंडर के साथ, आई हैव अ सोल्यूशन टू टेक योर मॉर्गेज टू दी ऑल्टरनेट लेंडिंग साइट, और इवेंचुअली बी लेंडिंग बोलते हैं जिसको राइट. तो मॉर्गेज आपकी बैंक के साथ मॉर्गेज हो सकती है मूव ऑलराइट, आपका क्रेडिट लो है, स्पेशली कंज्यूमर प्रपोजल या बैंकरप्सी की है आपने, आप चाहते हो साथ साथ आपकी कंज्यूमर प्रपोजल भी पे ऑफ हो जाए, वो भी हो सकती है. आप चाहते हो साथ साथ जो है जितनी भी डेट से 100-200,000 वो पे होना चाहे तो वो भी हो सकती है. एक ही शर्त है, आपके घर में एक्विटी होनी चाहिए राइट. एक्विटी के लिए देखिए, माई सेल्फ एंड माई टीम चेक योर होम वैल्यू विदाउट एनी कॉस्ट. पहले आपको फ्री जो है वैल्यूएशन हो जाएगी. वंस वी आर श्योर देर इज अ वैल्यू, इनफ वैल्यू, देन वील गो फॉर अ पेड अप्रेजल. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इफ यू आर इन अ सिचुएशन वेर एन यू गॉट स्टक विद द प्राइवेट फाइनेंस, यू वांट टू कम आउट टू द बैंक साइड, आई हैव अ सॉल्यूशन. इफ यू आर स्टक विद अप्रेजल वैल्यू, आपको नहीं पता घर की वैल्यू थोड़ी की है जी, मैनू थोड़ा नाम, घर का एड्रेस मैसेज करो, विद इन 2 बिजनेस डेज आई विल गिव यू द होम वैल्यू राइट. सो वंस अगेन आई एम हियर इन मिसिसागा रोड एंड डेरी थे. दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलीजन. नंबर टू कॉल मी 647-512-7000. किरण जी, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद.
1: बिल्कुल जी, मुकेश जी के नाल गलबात करने लिए एक बार फिर नंबर 647-512-7000 जरिया जी गलबात हो सकती है
2: जी. और इस नाल इसका प्रोग्राम पिज्जा डीपो के सहयोग नाल भी पेश कर रहे हैं. पिज्जा डीपो दी बहुत सारी लोकेशन तुहाडे आस पास ने, पिज्जा वेज, नॉन वेज या विंग्स तुसीं लेना चाहुंदे हो तो पिज्जा डीपो तो ऑर्डर कर सकते हो. pizzadepot.ca ते भी जा सकते हो. जेकर तुसीं इस बिजनेस च आना चाहुंदे हो तो पिज्जा डीपो दी कुछ नवीं लोकेशन भी जिहड़ियां आ रही ने तुहाडे लई, उहदी भी जानकारी तुसीं लै सकते हो जी 416-881-7070 दे उत्ते गल करके. तो फिर मुन्ना जी एक गीत सुना दिए.
3: बिल्कुल,
2: लो जी फिर आप थोड़ी जी एंटरटेन करते हैं. एक बहुत ही प्यारी आवाज अमरिंदर बॉबी होरां दी आ, और ए वी कैनेडा टूर दे उत्ते बहुत जल्दी आ रहे हैं, और लो फिर इन्हां दी आवाज थानू सुनाउने आ.

0: ਹਵੇ ਮਲਾ ਵਲੇ ਜਿਲਾ ਵਲੇ ਚ ਪੜਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੋਇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਤਨੋ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਖੀ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: मित्रां दे जंक्शन ते
0: हो केड़े जंक्शन ते
4: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते
3: रात लगियां महफलां रे
4: भाई महफलां ते रोज ही लगदियां ने इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकेट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM to 6 PM ड्रिंक्स 50% ऑफ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 6474940 40 6474294049 4040। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हूँ 3 लोकेशंस तो सर्व करते ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको रौला पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा, दाल, चावल, दाली सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
2: एक लाइफ है जिसे लव है,
3: ये कहते मुझसे सब है,
4: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।

देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो एम 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नूं सुनण वास्ते जां देश प्रदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो जे वाच करना चाहुंदे आ तां ओह ते क्लिक करो जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7 ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ